रामचंद्र जी की जय, श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, श्री रमापति रामचंद्र जी की जय, श्री वृंदावन कृष्ण बल्लाव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम।

श्री गोविंद गीता अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान अनेक आध्यात्मिक विषयों जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि की व्यापक व्याख्या करते हुए ज्ञान अज्ञान के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। जनार्दन कहते हैं कि सर्वव्यापक सर्वहृदय स्थित ज्योतिष परमात्मा ही ज्ञान है, ज्ञेय है, वह ज्ञान का परम लक्ष्य है। श्री गोविंद के शब्दों में

ऐसे परमात्मा को कुछ लोग ध्यान से, कुछ ज्ञान से, कुछ निष्काम कर्म से, कुछ सतत उपासना से व कुछ महिमा श्रवण से जान पाते हैं और अंततः प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं।

0: जाम दीप जल हल पुर देवता देवन किरे दरा बार हो माय माई देवन किरे दरा बार हो माय। जाम दीप जल हल खंड माता देवन के हो दरा बार हो माय। कौन देवता के रचय बिहद्रा कौन बिहाय लय जाय हो माय। माई नर बदिया के रचय बिहद्रा सोने बिहाय लय जाय हो माय। माई सोने बिहाय लय जाय।
1: बहुत पुरानी बात है, अमरकंटक में सोन और नर्मदा का ब्याह तय हुआ था। बारात चल पड़ी थी, नर्मदा ने अपनी नाइन जोहिला को सजा धजा कर भेजा कि जरा देखो तो बारात की शोभा कैसी है। जब कुछ देर हो गई और जोहिला लौटी नहीं तो नर्मदा जी खुद निकल पड़ी खोज खबर लेने। देखती क्या है कि सोन और जोहिला आपस में हंस बोल रहे हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाती नर्मदा ने मुंह फेरा और चल पड़ी पश्चिम की ओर। फिर तो वो कुंवारी ही रह गई। उधर सोन पछताते चल पड़े पूरब दिशा में, जोहिला भी फिर सोन के साथ होली।
0: ये तनल सुन के माइनर बदिया पाँव पै जनिया जो दे हो माय। पाँव पै जनिया ला दे हो माय।
2: कैसी अनूठी कल्पना सजाई है इस लोकगीतकार के मन ने। बात कुछ ऐसी ही है कि शहडोल जिले के एक ही स्थान अमरकंटक से निकली है नर्मदा भी, सोन भी और जोहिला भी, पर ये बहती हैं अलग अलग दिशाओं में।
1: इसी भौगोलिक तथ्य से रचा गया है ये लोक मिथक, जो मध्य प्रदेश में बघेल खंड अंचल में थोड़ा बहुत बदलकर बार बार मिलता है। ऐसी टीस है इस कथा में कि एकदम तरुण हिंदी कवि एकांत श्रीवास्तव की कविता अमरकंटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है।
3: जब फैल जाती है रात की चादर, नींद के धुएं में डूब जाते हैं पेड़ फूल और पहाड़, इसकी गहरी घाटियों में गूंजती है सोन की पुकार, नर्मदा ओ नर्मदा ओ नर्मदा ओ, और पहाड़ों के सीने में ढुलकते हैं नर्मदा के आंसू।
2: विंध्य पर्वत श्रेणी में मेकल पर्वत पर बसा अमरकंटक पहले आम्रकूट कहलाता था। इसकी प्राकृतिक सुषमा का अभिभूत वर्णन महाकवि कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। अमरकंटक शताब्दियों से आस्था और उपासना का पुनीत स्थान रहा है।
1: अमरकंटक के पूर्वी छोर पर है सोनमुड़ा। यहाँ एक छोटे से कुंड से रिश्ते जल के धीमे संकोची और क्षीण प्रवाह को देखकर कौन कल्पना कर सकता है कि यही सोनभद्र है।
2: हमारे पौराणिक भूगोल में तीन को महानद माना गया है, शेष नदियाँ हैं। इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलते हैं, विंध्याचल से निकलकर भारत के हृदय स्थल यानी हिंदी भाषी प्रदेश में अपने उद्दाम वेग से पराक्रम दिखाने वाला अकेला महानद है सोनभद्र यानी सोन।
3: नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः, मेकलोद्भवाय बृहते सर्व पाप हराय च।
1: ये है आग्नेय पुराण वर्णित सोन महात्म्य का शुभारंभ। सोनभद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया है और इसके क्षेत्र को निश्चय पुण्य देने वाला और मंगलकारक कहा गया है।
2: किंतु इस महाप्रतापी सोन को अमरकंटक में शिशु रूप में एक एक डग भरता देखना अनूठा ही अनुभव है। सोनमुड़ा से कुछ ही आगे बढ़कर मेकल पर्वत की खड़ी ढलान पर सोन जैसे उछाल सी भरता है और फिर
4: नीचे लुप्त हो जाता है।
2: इस स्थल पर वर्षों निवास किया है स्वामी गोपाल दास जी ने। उनकी स्मृतियां पुरानी और लगाव गहरा है।
5: वन्य पशुओं का तो वहाँ अगणित सीमा में रहा करते थे। 4 बजे

0: संध्या के समय से तो यहाँ आवागमन ही बंद हो जाता था, उन्हीं की ही चारों तरफ शोर मची रहती थी। इस अमरकंटक क्षेत्र में विश्व विख्यात तपोवन होते हुए भी यहाँ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का भी काफ़ी मात्रा में, जैसे कि ब्रह्मी है और कामराज, तेजराज, भोजराज, बलराज, इस प्रकार जैसे कि शंखपुष्पी है और रुद्रवंती है, गुलबकावली नाम का एक पुष्प है और संजीवनी बूटी भी पाई जाती थी।
1: सोनमुंडा से कुछ आधुनिक ढंग का रिश्ता है यहाँ के विकास कार्य से जुड़े श्री अंबिका प्रसाद तिवारी का।
2: प्राकृतिक दृश्य के बारे में तो जो कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो ये कश्मीर है ही। यहाँ मानसून दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी बदल, कभी बूंदाबांदी, कभी तेज हवा, कभी पानी और कभी हल्की फुल्की गर्मी। भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ विकास करना उचित नहीं है, यहाँ की नेचुरलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी।

0: सोनमुड़ा के नीचे घाटी में लोप के बाद भूमि पर सोन के दोबारा दर्शन होते हैं। पड़ोस के बिलासपुर जिले में पेंड्रा से कुछ दूर सोन बचरवार नाम के गांव में यहाँ एक पक्का कुंड है जो सोन कुंड ही कहलाता है।
1: इस कुंड का जल एक पतली नाली द्वारा बारहों महीने निकलकर खेतों में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख पड़ता है। बस शुरू हो जाती है सोन की प्रकट यात्रा। पहले उत्तर, फिर उत्तर पश्चिम और अंततः पूर्वोत्तर दिशा की ओर।
0: ये यात्रा शांति पाती है बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम की ओर भोजपुर जिले में मनेर के पास हरदी छपरा के सामने, जहां सोन का संगम गंगा से होता है।

0: उद्गम से संगम तक सोन चलता है 784 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 202 किलोमीटर बिहार में।
1: यह भारतीय उपमहाद्वीप का 14वां लंबा जल प्रवाह है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर।
0: इस बीच बारी बारी से आकर इसमें मिलते जाते हैं छोटे बड़े नाले और सहायक नदियाँ। सोन की कुछ प्रमुख शक्ति धाराएं हैं केवई, तिपान, कुनुक, जोहिला, कैमूरी महानदी, बनास, गोपद, रेड या रिहंद, घाघर, कनहर, पंडा और उत्तर कोइल।
1: समूचे सोन क्षेत्र की भूमि के तीन मुख्य प्रकार हैं, प्राचीन पहाड़ी प्रदेश, पठारी भूभाग और नदियों के रचे हुए मैदान। पहाड़ों में कैमूर कहंजुआ, सतपुड़ा मैकल और भीतरीगढ़ मैकल विशेष उल्लेखनीय हैं।
0: सोन का काफी क्षेत्र अब भी बहुत दुर्गम घने जंगलों तथा वन्य प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ निवास करती हैं अनेक जनजातियाँ।
1: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति का विभोर वर्णन करते हुए साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र नीरव।
2: रेणुका सोन के संगम पर अगोरी नाम का स्थान है, जिसे हम इतिहास के विभिन्न चरणों का साक्षी मान सकते हैं। और यहाँ पर सोन सिर्फ विंध्य की एक अप्रतिम नदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की साक्षी के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ हम एक तरफ कई करोड़ साल पुराने जीवाश्म सलखम नामक स्थान पर देखते हैं, जहाँ पर अपने आँखों से देख सकते हैं पथराए हुए पेड़ उस काल के, जब यहाँ कभी समुद्र बहता था। उसके बाद हम सोन के ही तट पर देख सकते हैं भारशिव नाग काल के, बुद्ध काल के पहले के भी शैव सभ्यता के अवशेष। शिवद्वार में गौरी शंकर

0: कर बरेला में और उसके बाद गुप्त काल के, मध्य काल के, चंदेल और गहरवार काल के ऐतिहासिक अवशेष कुंडवासिनी तीर्थ, बंसरा देवी, गौरी शंकर, बरेला, गोठानी तीर्थ, अमिला और आगे जाकर के विभिन्न स्थानों पर राजा नल, कंडाकोट, सब सोन के तटों पर बसे हुए ऐतिहासिक स्थल हैं। सोन सिर्फ एक हरी सुनहरी नदी ही नहीं है, इसके तट पर वन्य सभ्यता, वनवासियों की गृहस्थियाँ बसीं आदिकाल से अब तक, बल्कि सोन एक पूरी की पूरी संस्कृति है जो यह बतलाती है कि मध्य भारत में, मतलब गर्म पहाड़ों में, किस प्रकार के लोग किस तरह के जीवन जीते रहे हैं।
1: जनजातीय बोलियों में मुंडारी, खरवारी, बिरहोड़ी, कोरवा, आसुरी, कुड़ुक और गोंडी प्रमुख हैं। आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी और मगही।
2: सोन के मार्ग में पड़ने वाली मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधी जिलों में बघेली ही बोली जाती है।

0: सीधी निवासी श्री बद्रीनाथ श्रीवास्तव इस अंचल में खूब घूमे हैं और एक अनुभव सिद्ध विचार उनके पास है।
1: आज़ादी के बाद से लोगों का दृष्टिकोण बदला है और अब उसको वो एक जीवन धारा के रूप में देखना चाहते हैं कि उससे सिंचाई के लिए पानी मिले, वहाँ पर वन प्राणी वगैरह जो है स्थल ऐसे बने, पर्यटन के लिए कोई स्थानों का चुनाव हो सके।
2: सीधे जिले में ही प्रसिद्ध बगदरा अभयारण्य के पास स्थित है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सीधी के जिला वन अधिकारी डॉक्टर जे के उपाध्याय के शब्दों में,
3: सोन नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल और मगर पाए जाते थे। उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का गठन किया गया। ये सन 82 से प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्यतया दो जगह पर घड़ियाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भंवरसैन जहाँ के नदी गहरी है और दूसरा हमारा एक स्थल जोगदाहा है जहाँ पर के घड़ियाल काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 124 है। इसे लगा हुआ क्षेत्र हमारा बगदरा अभयारण्य का है जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
0: प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरी गाथा का जन्म भी सोनांचल में ही हुआ था, जहाँ से ये लगभग समूचे हिंदी प्रदेश में रूप बदल बदल कर पहुंच गई।
4: नदी पर गा और डेरा पर गल हो बरी, अरे बरिया तने बखलूरी।

0: लीलार कहें कि आज इतना नौकाए नदी सोन भद्र पर बा कुल वो पार खुटियावल बा कैसे बरतिया उतर चली गोसाइया।
1: सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के निवासी और लोक संस्कृति मर्मज्ञ के डॉक्टर अर्जुन दास केसरी बताते हैं,
2: आपके मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय संस्कृति का एक प्रकार से संगम हुआ है। यहाँ की जनजातियों का मुख्य नृत्य कर्मा है और कर्मा के साथ साथ कोलों का कोल दहकी है। अगरिया जात यहाँ की बड़ी मशहूर जात जनजाति है, उनका अगरही है, मुसहरों का मुसरही है। इसी तरह से और भी जितनी जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य यहाँ लोकप्रिय हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, यहाँ की संपूर्ण सोन घाटी की संस्कृति एक प्रकार से संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई है। यहाँ कई गाथाएं लोकप्रिय हुई हैं,

0: बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और पायराइट जैसे बहुउपयोगी खनिजों से यह क्षेत्र समृद्ध है।
1: कोयले की बहुतायत के कारण सीधी जिले की बैढ़न तहसील और सोनभद्र जिले में तो जैसे देश की ऊर्जा राजधानी ही स्थापित हो गई है। एनटीपीसी की विंध्याचल वृहद ताप परियोजना के सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री मंजुल तिवारी के शब्दों में,
2: भारत सरकार ने और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सोचा कि क्यों ना हम पावर स्टेशन वहाँ बनाए जहाँ पर कोयले की इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्धि है। तो इस तरह से सोन घाटी के विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की गतिविधियाँ शुरू हुई। कोयलों की खदानें एनसीएल के सौजन्य से धीरे धीरे बढ़ती गईं और आज 11 खदानें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा एनटीपीसी ने 3 परियोजनाएं यहाँ पे लगाईं, विंध्याचल परियोजना, सिंगरौली परियोजना एवं रिहन परियोजना, और कुल मिलाकर इसकी जो स्थापित क्षमता है वो करीब 7000 मेगावाट है। इसके अलावा यहाँ पर यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 परियोजनाएं यहाँ पे लगाई गई, वो अनपरा और ओबरा।
0: अपने उत्तरार्ध में सोन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, खूब चौड़ा पाट और गरजता हुंकार भरता तेज प्रवाह। वो नद है ना, सो पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखलता से बार बार अपना मार्ग बदलता रहा है और वर्षा ऋतु में इसकी प्रलयंकारी बाढ़ की स्मृतियां पुराने लोगों के हृदय को अब भी कांपा जाती हैं।
1: भोजपुर जिले के पथार गांव के मूल निवासी देव कुमार मिश्र ने वर्षों सोन तट और समूचे सोन क्षेत्र में बीहड़ यात्राएं कर सोन पर एक अप्रतिम पुस्तक ही रच डाली है। कुछ स्मृतियां उनके शब्दों में,
3: वराज बनने के पहले तो सोन बहुत प्रलय मचाता था और पानी आता था ऐसे जैसे बिल्कुल दीवार आ रही हो। रोहतास जिले में एक मुहावरा ही है, हिरनवाह, बैल को हमारे बैल को हिरनवाह हो गया है। कुछ उसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि बीमारी से आक्रांत पशु उछल कूद करने लगता है, हर काम में अड़ंगा डालने लगता है। हिरण्यवाह नाम है, सोन का ही दूसरा नाम है। हिरण्यवाह बीमारी जो है सोन की प्रकृति को उजागर करता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरह सोन का व्यवहार बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है।
0: यह सहज ही है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास से उपजी शक्ति का प्रयोग इस प्रचंड जलराशि से मैत्री कराने के लिए किया जाता। बिहार के रोहतास जिले में डेहरियान सोन के निकट इंद्रपुरी में है सोन बराज सिंचाई योजना। लगभग 125 वर्ष पुरानी इस योजना की नहर प्रणाली की चर्चा करते हुए डेहरी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी,
4: इस सोन नदी से बिहार क्षेत्र में लगभग 125 साल पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि अंग्रेजों ने डेहरी के निकट एक एनीकट बनाया था और उससे ये पानी लेके नहरों के मार्फत ले जाते थे। इसके बाद जब वो एनीकट बहुत पुराना हो गया तो फिर बिहार सरकार ने एक बराज बनाया वहाँ पुराने एनीकट के लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से फिर ये पुरानी नहरों को जोड़ दिया गया और एक उच्च स्तरीय नहर भी निकाले गए दोनों तरफ ये बराज के, और इससे अब जो है जो ज़िले बन गए हैं भोजपुर, रोहतास और इधर औरंगाबाद और इधर पटना, इन ज़िलों में इससे 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हम लोग कर रहे हैं।
1: सोन नहर की सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग, भूगर्भ जल विकास, उत्पादन और बाजार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार में सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी के नाम से एक स्वशासी निकाय गठित किया गया।
0: इसका कार्यक्षेत्र पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, जहानाबाद और पलामू जिलों में है। इस एजेंसी ने सोन बीज नाम से धान के उन्नत बीज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसने बड़े पैमाने पर हाथ में लिए हैं।
1: इसी नहर प्रणाली के कारण सोन जैसे बिहार की जीवनदायिनी नदी बन गई है। रोहतास जिले के ग्राम पहलेजा के कृषक श्री उदल सिंह कहते हैं,
5: जब से इंद्रपुरी का बांध बंधा है तब से डेहरी ओनसों से उत्तर और पश्चिम पूर्व वाले लोगों को खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ है।

0: धान होता है और गेहूँ होता है। बाहर आने से फसल ज्यादा होने लगा है।
1: सोन की लहरों से ही एक अन्य रूप में जीवन यापन करते हैं मछुआरे।
2: हमारा नाम सुरेश चौधरी है, रहते हैं इंद्रपुरी में। मछली है, थोड़ा बहुत चलवा पोठिया मिलता है सोन में, रीठा बामी मिलता है यहाँ पर, चलवा बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है। एकरे में बाल बच्चा हमारा जीता है खाता है, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। बस इसी में हम लोग का है कि इसी में जीना है मरना है हम लोग का।
1: हाल ही में डेहरी आन सोन में सोन नहर पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू हो गई है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री ब्रज किशोर द्विवेदी।
3: यहाँ सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल है जो सोन नदी पर है, उसी पर हम लोगों का यह सोन वेस्टर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बना है। इसमें चार इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.65 मेगावाट है। यहाँ तीन इकाइयाँ रेदर कमीशन हो चुकी हैं, चौथी इकाई भी करीब करीब तैयार है। सो करीब करीब हमारे चारों यूनिट रेडी हैं। 12 महीना हम लोग इसे, जब भी कनाल में पानी रहेगा तो हम लोग उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं। और एक इकाई से प्रतिदिन करीब 40,000 यूनिट हम लोग जनरेट करेंगे।
4: विकास के स्वप्न को सींचने वाली सोन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है बाणसागर बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना।
1: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों के लिए आगत समृद्धि के स्वप्न समेटे इस परियोजना के तकनीकी पक्ष के बारे में बता रहे हैं परियोजना के रीवा स्थित मुख्य अभियंता श्री के अंबाजी राव।
5: इस प्रोजेक्ट में एक है कि ये 63 मीटर हाई डैम है, मुख्य बात, और इसकी लंबाई 1020 मीटर है और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 5.1 मिलियन एकर फीट, वो काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 56,000 हेक्टेयर मतलब 560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा पानी फैल जाएगा। इसमें ये जो हमारे जो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हम यूज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उसमें 1.48 मिलियन एकड़ फीट हम सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं और 0.52 मिलियन एकड़ फीट हम एमपीपी को दे रहे हैं जिससे वो हाइड्रो पावर जनरेट किया कर सकते हैं। 435 मेगावाट की क्षमता के हमारे कुल ये 4 पावर हाउसेस में इसका होने का है।
1: लेकिन बड़ी विकास योजनाएं अपनी भरपूर कीमत भी वसूलती हैं, आशाओं के साथ आशंकाएं भी उपजती हैं। बाणसागर परियोजना की संभावित डूब क्षेत्रों में आने वाले सतना जिले के ग्राम झिन्ना के श्री भैयालाल वैश्य का मन इन्हीं में डूब उतर रहा है।
6: हम ये सोच रहे हैं कि हमको कम मुआवजा मिलेगा और हम कहाँ जाएंगे। आज 30 वर्ष हमारी उम्र है, हमारी प्रगति करने वाली उम्र अभी है और हम आगे कहाँ जाकर क्या प्रगति कर लेंगे, अपने हम बाल बच्चे के लिए भविष्य में क्या उन्नत कर पाएंगे।
4: ऐसी ही उथल पुथल बिहार के गढ़वा पलामू जिले के ग्राम बिजड़ी के श्री रघुनाथ दुसाद के मन में भी है, जिनका गांव सोनपुर निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना की डूब में आने वाला है।
7: हम लोग को तो लगता है कोई ऐसा गांव अब तो नहीं मिलेगा, हम लोग को तो अफसोस हो ही रहा है। हम लोग को सोन नदी से तो बहुत फायदा है क्योंकि सोन की ढाब से हम लोग पैदा जितना कमा रहे हैं जमीन से वो भी फायदा है।
1: ऐसे में शायद समाधान एक ही है, मानवीय नियति के प्रति संवेदनशील प्रशासकीय नीतियां और उन पर ईमानदार अमल। बाणसागर परियोजना के रीवा में पदस्थ भू अर्जन और पुनर्वास आयुक्त श्री प्रकाश चंद्र के स्वर में गुत्थियों को सुलझाने का विश्वास और धीरज है।
8: जो परिवार अपने सामाजिक परिवेश से विस्थापित होंगे उन्हें बसाने के लिए नए आदर्श ग्रामों की बसाहट का काम पूरा किया जाएगा। आदर्श ग्रामों से तात्पर्य यह है कि वहां हम किसी भी नागरिक सुविधाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे बिजली, सड़कें, पानी, पेयजल और अन्य शिक्षा से संबंधित बातें, इनको हम वहाँ तुरंत निर्मित करेंगे, इनकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, शासन ने इन आदर्श ग्रामों में ये रखी है कि प्रत्येक ग्राम में एक विकसित भूखंड जो 50x90 वर्ग फीट का होगा यह प्रत्येक विस्थापित को दिया जाएगा, जो निःशुल्क दिया जाएगा।
4: औद्योगिक जल प्रदूषण हमारे दौर की एक भीषण समस्या है, सोन भी इससे अछूता नहीं।
1: शहडोल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं,
9: मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रभाव पानी में आते हैं उस

0: प्रभाव के फलस्वरूप पानी का पीएच एसिडिक हो जाता है, पानी टर्बिट हो जाता है और पानी का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
1: सोनभद्र ज़िले में ओबरा में रह रहे पत्रकार और पर्यावरण चैतन्य संस्था के महासचिव श्री राहुल श्रीवास्तव,
2: हर महीने करीब 50,000 टन राख जो है सोनदीम चली जाती है।

0: विश्वविद्यालय के कुलपति और पर्यावरण जीव शास्त्री प्रोफेसर J.S. राठौर।
1: ये जो अम्लाई क्षेत्र है, जो मिल वाले हैं, वो पूरे नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बना देते हैं। गर्मी के दिनों में पानी कम होता है और मिल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इन दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए पूरी नदी ही मिल के अंदर पहले चली गई और फिर नीचे जो है जो पानी फेंका गया वो पूरा प्रदूषित पानी ही फेंका गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पर्यावरण है वो मूल रूप से जीवन शैली और जीवन दृष्टि का प्रश्न है। आधुनिकीकरण ने जो नदियों को, जो हम माता और एक दिव्य रूप में देखते थे, वो दृष्टि के ऊपर कोहरा एक तरीके से आधुनिक दृष्टि ने किया है, और यही कारण है कि हम उनकी पवित्रता को बनाने में उतना उत्साह नहीं दिखा पाते जितना कि हमें दिखाना चाहिए।
0: शायद हमें अब पुनराविष्कार करना होगा अपनी मूल विश्व दृष्टि का, जिसमें जीवन और नदी का अद्भुत तादात्म्य है। नदी को जैसे जीवन के प्रवाह का ही प्रतीक माना गया है,
2: उसमें सभी कुछ तो है, निरंतरता, अखंडता, दुर्निवार संकल्पशीलता और अविराम गति। आधुनिक चेतना और उपकरणों से संबद्ध होकर इसकी दुर्दमनीय पौरुषेय शक्ति से ऐसी स्थायी मैत्री हम कर पावे
0: कि इसके अंचल में जीवन के उल्लास की लय में बंधे पांव थिरकते रहे अनंत तक। जैसा अनंत इसका ओज है, जैसी अविराम इसकी यात्रा है, अपनी ऊर्जस्विता में हमारी अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पंदित करती हुई।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: शिव महिमा महिमा।
1: प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

शिव पुराण का अगला खंड विद्येश्वर संहिता से है, जिसमें शिव जी की महिमा के अनेक प्रसंग हैं। इस अध्याय के अलग अलग प्रसंग हम अलग अलग प्रकरणों में सुनाएंगे। आज हम रुद्र संहिता के प्रथम खंड से कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं।

0: हे सूत जी, निर्गुण महेश्वर संसार में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? भगवान शिव के इस तत्व को समझाइए।
1: शौनक सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद की एक दिलचस्प कथा सुनाता हूँ, जो अत्यंत आनंददायी और ज्ञान को बढ़ाने वाली है। एक समय मुनिवर नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गए। हिमालय की उस एकांत कंदरा में देवर्षि नारद को शिव की तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या का समाचार इंद्र तक पहुंचा।

0: रंभा, मेनका, उर्वशी, तुमने अत्यंत मोहक नृत्य करके हमें मोह लिया है।
1: अरे ये हमारा सिंहासन, हमारा सिंहासन हिल कैसे रहा है?
0: क्या मृत्युलोक में इंद्रासन पाने की कोई चेष्टा कर रहा है? देवदूतों, तुरंत पृथ्वी पर जाओ और मालूम करो कि हमारे सिंहासन के हिलने का क्या कारण है।
2: जैसी आज्ञा देवेंद्र। चिंता की कोई बात नहीं, उर्वशी, मेनका, रंभा, नृत्य चलता रहे।
3: जो आज्ञा महेंद्र।

0: क्या समाचार है देवदूत?
1: हे देवेंद्र, समाचार मिला है कि हिमालय पर्वत की एक कंदरा में देवऋषि नारद अनेक वर्षों से कठोर तपस्या में लीन हैं। उनके तप के प्रभाव से तीनों लोकों के देवी देवता और साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत प्रसन्न हैं।
0: अच्छा, कहीं उनकी इच्छा हमारे सिंहासन पर अधिकार करने की तो नहीं है? उर्वशी, रंभा, मेनका, तुम अभी पृथ्वी पर जाओ और किसी भी प्रकार महर्षि नारद का तप भंग करो। अपने साथ कामदेव को भी ले जाओ, जिससे देवऋषि नारद का मन विचलित हो जाए।
2: जैसी आज्ञा देवेंद्र,
3: हम अभी पृथ्वी लोक पर जाते हैं
2: और महर्षि नारद का तप भंग करते हैं। सखी उर्वशी, महर्षि नारद तो तपस्या में पूरी तरह खोए हुए हैं।
3: हाँ, उनका तप भंग करना कठिन जान पड़ता है।
2: चलो नर्तन करते हैं।
3: हाँ, चलो।

0: सखी, हमारे नृत्य का तो नारद पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। तो सखी, क्यों ना कामदेव से निवेदन किया जाए।
1: हाँ, ये ही उचित है।
2: हे कामदेव, हम तो असफल हो गए।
0: कृपा करके आप अपने प्रभाव से महर्षि नारद की तपस्या में विघ्न उपस्थित कीजिए ना।
3: ठीक है, ये तो मेरे लिए अत्यंत सरल है। अरे आश्चर्य, मेरे पंच बाणों का देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं।
0: बड़े आश्चर्य की बात है कामदेव, आपके बाणों से तो आज तक कोई नहीं बचा।
1: ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, इसमें अवश्य कोई गंभीर रहस्य है।
3: रुको, मुझे तनिक चिंतन करने दो। ओ, आप समझा, बहुत पहले भगवान शिव ने इसी आश्रम में तपस्या की थी और इसी जगह भगवान शंकर ने मुझे भस्म किया था। बाद में रति की प्रार्थना से मुझे नया जीवन मिला था। इस स्थान की महिमा के कारण यह मेरा प्रभाव क्षीण हो गया है।
0: तो अब क्या करें? चलो देवराज इंद्र को जाकर सारी बात बताएं।
1: हाँ, वही कोई उपाय बताएंगे।
4: अच्छा, देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं हो सकी?
3: हे देवेंद्र, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, शायद वो स्थान ही कुछ।
4: हम जानते हैं कामदेव, तुम विश्राम करो।
0: हे देवराज इंद्र, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है?
1: आपके सिंहासन की सुरक्षा के लिए
4: चिंता की कोई बात नहीं हरंभा, क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि महर्षि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं।
1: हे देवेंद्र, ये जानकर

0: नारायण नारायण। हे काम आर्य, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते ही होंगे कि मेरी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा था लेकिन वो सफल नहीं हो सका महादेव, अब मैं भी कामार्य हुआ।
1: तात नारद, मुझे सब कुछ फली प्रकार ज्ञात है। तुम बड़े विद्वान हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। भविष्य में कभी ऐसी बात किसी से भी ना कहना, विशेषकर भगवान विष्णु से इसकी चर्चा कदापि ना करना।
0: नारायण नारायण। हे शिव शंभु, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हूं। हे महादेव, मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण।
2: आइए पधारिए देवऋषि, ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, कोई विशेष बात?
0: नारायण नारायण। हे परमपिता ब्रह्मा, आप तो जानते ही होंगे कि हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या के बाद आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ।
2: हाँ महामुनि, हमें यह भी याद है कि आप देवराज इंद्र के गर्भ को चूर करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। लेकिन महामुनि, ये बात आप भगवान विष्णु से कदापि ना कहिएगा।
0: हे परमपिता ब्रह्मा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
2: ये बात हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, आगे जैसी आपकी इच्छा।
0: नारायण नारायण नारायण नारायण।
2: हे लक्ष्मीपति, देवऋषि नारद पधारे हैं,
3: उन्हें सादर ले आओ।
2: जो आज्ञा।
3: हे लक्ष्मी, आप जानती हैं इस समय नारद गर्भ में चूर हैं।
4: हे चक्रधर, क्या आपके मन में उनके गर्भ को खंडित करने की कोई योजना है?
3: हे महादेवी, हम वही करेंगे जो उनके हित में होगा।
0: नारायण नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।
3: आइए देवर्षि, पधारिए। कहां कहां का भ्रमण करके आ रहे हैं?
0: कहीं विशेष नहीं भगवान विष्णु, एक लंबी तपस्या के बाद
3: शिवलोक और ब्रह्मलोक का भ्रमण करके आ रहे हैं, ठीक है ना?
0: नारायण नारायण, आप तो घट घट वासी हैं प्रभु, आपसे क्या छुपा है? आप ये भी जानते ही होंगे कि
3: हाँ, कि आपने घोर तपस्या के बल पर कामदेव को जीत लिया है। आप तो निष्ठावान हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकते हैं? क्यों, ठीक है ना?
0: स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? नारायण नारायण। अब अनुमति दे प्रभु।
3: हे देवर्षि, आपका कल्याण हो।
0: नारायण नारायण नारायण।
4: हे स्वामी, सचमुच देवर्षि नारद के मन में घमंड आ गया है।
3: हाँ, हमें इसका पहले से ही अनुमान था। देवदूत,
2: आज्ञा प्रभु।
3: माया को बुलाओ।
2: जैसी आज्ञा प्रभु।
4: स्वामी, क्या माया जाल रचकर देवर्षि नारद को पाठ पढ़ाना चाहते हैं?
3: हाँ, यही एक सबसे अच्छा उपाय है।
5: मैं उपस्थित हूँ प्रभु।
3: माया, अभी अभी देवर्षि नारद पृथ्वीलोक की ओर गए हैं, उनकी राह में एक विशाल नगर की रचना करो जो वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय हो। वहां के राजा शील नीति की अत्यंत सुंदर कन्या के स्वयंवर का आयोजन करो।
5: जैसी आज्ञा प्रभु।

0: नारायण, कैसा अद्भुत नगर है, लगता है स्वर्गलोक में आ गया हूँ। नारायण नारायण, यहाँ के राजा इंद्र से भी अधिक वैभवशाली लगते हैं। ये राजभवन तो जैसे मन में उत्सुकता जगा रहा है। नारायण नारायण, चलो यहाँ के राजा से मिलूं।
1: देवर्षि नारद, धन्य भाग जो आपने इस नगरी को पवित्र किया। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु।
0: नारायण नारायण, राजन आपकी नगरी तो नववधु की तरह सजी हुई है, है? इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। नारायण नारायण, ये सुकन्या कौन है?
1: ऋषिवर, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने वर को चुनने के लिए शीघ्र ही स्वयंवर में जाने वाली है।
0: राजन, आपकी ये पुत्री सारे शुभ लक्षणों से संपन्न है।
1: महर्षि, तनिक इसका भाग्य बताइए।
0: सुनो राजन, इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान होगा, वैभवशाली, किसी से पराजित न होने वाला, सारे देवताओं में श्रेष्ठ।
1: महर्षि, आपके इन वचनों से मैं धन्य हो गया।
0: राजन, मैं सत्य कह रहा हूं, इस कन्या का वरण करने वाला सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर न तो हुआ है न होगा। अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं।

0: नारायण नारायण।
1: अरे महामुनि नारद, आप फिर यहाँ? सब कुशल तो है ना?
2: भगवान, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए इधर आइए। हाँ कहिए महामुनि, अब अपनी बात कहिए।
2: भगवान, पृथ्वी पर राजा शील नीति की एक अत्यंत सुंदर कन्या है, उसका नाम श्रीमती है। आज ही उसका स्वयंवर है, चारों दिशाओं से वहां अनेक राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ।
1: अच्छा, तो मुझसे आप क्या चाहते हैं?
2: प्रभु नारायण, प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी मुझको वर के रूप में चुन ले। नारायण नारायण।
1: महामुनि, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे एक अच्छा वैद्य किसी पीड़ित रोगी का करता है।
2: प्रभु, आपने ये बात मेरे मन के अनुकूल ही कही है। मैं तुरंत पृथ्वी लोक में जाता हूँ। आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे।
1: आपका कल्याण हो।

0: शहजाद पुत्र से सैकड़ों राजकुमारों के बीच वो कन्या किसको चुनेगी? निश्चय ही मुझे। मैं भगवान विष्णु का रूप जो हूं।
1: अरे वाह, आपका स्वरूप तो दिव्य है श्रीमान। हमने आज तक संसार में ऐसा प्राणी नहीं देखा।
2: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बंधु। देखो ना, कितना तेजस्वी शरीर है और उस पर कितना अद्भुत मुख। जैसे संसार के सभी प्राणियों के स्वरूप को एक रूप दे दिया हो। कैसी दिव्य आकृति है।
1: बंधु, आपका परिचय जानने की धृष्टता कर सकता हूँ?
0: भला मेरा क्या परिचय, समझिए कि बस हरि का भक्त हूँ।
2: लेकिन आप तो साक्षात हरि हैं।
1: हरि यानी बंदर?
2: नहीं नहीं, हरि यानी विष्णु।
0: क्या आप भी स्वयंवर की इच्छा से आए हैं?
1: अरे नहीं महोदय, आपके स्वरूप के सामने भला हम क्या हैं?
2: महोदय, इस पूरी सभा में केवल आप ही आप हैं।
3: जी बाबा, मुझे को राजकुमारी क्या रही है? हंसी टिटोली बंद करो।
1: हाँ, गंभीर होकर बैठ जाइए।
2: अब तक कहीं इतना भी गंभीर ना हो जाना कि आंखों से आंसू ही निकल पड़े।
0: अरे राजकुमारी इधर तो आ ही नहीं रही है।
1: शायद असमंजस में है, आपकी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया।
4: हाँ, अगर आपको देख लेती तो कहीं और देखने का प्रश्न ही नहीं उठता था।
0: अरे ये कैसी चोरी।
1: अरे हाँ, सारा सभागार प्रकाश से भर उठा है।
4: लगता है कोई दिव्य पुरुष है। देखो
1: हाँ,
4: राजकुमारी उधर ही बढ़ रही है।
1: अरे ये क्या, वो दिव्य पुरुष तो राजकुमारी को लेकर चला गया
2: और स्वयंवर समाप्त हो गया।
1: हाँ महोदय, आपकी इच्छा तो मन की मन ही में रह गई।
2: आपके हरि स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी किसके साथ चली गई?
1: हाँ,
3: ये अनर्थ है, अन्याय है। साक्षात हरि के स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी ने किसका वरण कर लिया?
1: श्रीमान, आपने दर्पण देखा है?
2: अपना स्वरूप तो देखिए।
3: तुम मेरा परिहास कर रहे हो?
1: नहीं नहीं, परिहास नहीं श्रीमान, आभास करा रहे हैं
2: आपको, आपके स्वरूप का आभास।
3: क्या कहना चाहते हो तुम?
1: प्रभु, आपके सुंदर बदन पर बंदर का मुख है।
0: बंदर का?
2: हाँ श्रीमान, इसीलिए आपका रूप असाधारण है।
3: तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, इसलिए तुम ब्राह्मण से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम दोनों का आकार राक्षस के समान होगा।
5: नारायण नारायण नारायण नारायण, ये अशोभनीय है।
6: देवर्षि देवर्षि, आप इतने कुपित क्यों हैं?
5: आप बड़े मायावी हैं। आपने आपने मुझसे कपट किया है, कपट।
6: ऐसा क्या हुआ देवर्षि?
5: आपने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया। मैं शाप देता हूँ, आपने मुझे जो रूप दिया उसी के कारण आप मनुष्य हो जाएं, स्त्री के वियोग का दुख भोगे। और जिन बंदरों के समान आपने मुझे रूप दिया है वही बंदर आपके सहायक हो। ये मेरा शाप है। नारायण नारायण।
6: हे देवर्षि, आपके इस श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ। वास्तव में ये सब शिव शंकर का प्रताप है। उन्हीं की इच्छा से मैंने विश्व मोहनी माया के द्वारा आपको मोहित किया था। भगवान शिव की इच्छा से अब मैं अपनी माया को

0: अरे ये क्या, तो क्या माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था? हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने आपको श्राप दे डाला। हे प्रभु, उस श्राप को मिथ्या कर दीजिए, प्रभु उसको मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है प्रभु। हे विष्णु, बताइए मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए, प्रभु बताइए।
1: तात, खेद ना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने महादेव की बात नहीं मानी, इसीलिए भगवान महेश्वर ने तुम्हें ऐसा फल दिया।
0: हे विष्णु, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे इस वेदना से बचाइए।
1: हे मुनि नारद, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम भगवान शंकर की स्तुति करो, उन्हीं की उपासना करो और उन्हीं का भजन करो। हे देवर्षि, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे।
0: नारायण नारायण।
2: हे शौनक, भगवान विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर मुनिवर नारद महेश्वर के शिवलिंगों के भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।
3: हे सूची, फिर उन दोनों पार्षदों का क्या हुआ, वे कौन थे?
2: शौनक, शिव के पार्षद उनके श्राप के कारण अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए।
3: और देवर्षि नारद ने जो भगवान विष्णु को श्राप दिया था, उसका परिणाम क्या हुआ?
2: उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार धारण करना पड़ा और उनके हाथों शरीर त्याग कर रावण और कुंभकर्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ।
3: महामुनि देवर्षि नारद की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ।
2: हे शौनक, रुद्र संहिता के अनुसार पांचवें खंड तक की ये कथा भगवान शिव के प्रताप को बताने वाली है। ये कथा मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी है।
3: हे सूची, मेरे मन में एक जिज्ञासा है।
2: निसंकोच कहो।
3: आपने बताया कि मोह के बंधन से छूटने पर देवर्षि नारद ने पृथ्वी पर शिवलिंगों का दर्शन किया और उनकी उपासना की। शिव के लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप का रहस्य क्या है?
2: शौनक, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, साथ ही रूपमान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा गया है। इसलिए वे साकार और निराकार दोनों ही हैं। शिवलिंग भगवान महावीर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिव का साकार रूप उनके विक्रेय का प्रतीक है।
3: भगवान, शिव से भिन्न जितने भी देवता हैं उनकी पूजा मूर्ति रूप में ही अधिक होती है, लेकिन भगवान शिव की दोनों रूपों में पूजा करने का क्या रहस्य है?
2: शौनक, लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है जो निराकार और निरानंद है। वे सभी जगह व्याप्त हैं, किंतु उनका कोई रूप नहीं। उस परम ज्योति के परमात्म प्रकाश को ही लिंग रूप में पूजा जाता है, लेकिन त्रिदेव तीनों देवों में अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश में जो संसार के उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता है, भगवान शंकर का मूर्ति रूप जितना विस्मयकारी है उतना ही ज्ञानमय भी है। वास्तव में शिव के स्वरूप के प्रत्येक अंग का विवेचन भी हमें निराकार और साकार उपासना के रहस्य को भी समझाने में समर्थ हो सकता है। इसका विवेचन विस्तार से करेंगे।
4: श्रोताओं, अभी आप शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभ के अध्यायों का सार सुन रहे थे।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

अवध जब आएंगे मेरे राम, अवध जब आएंगे।

पीछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल

ਡਿੱਠੇ ਸਬੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह, जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी

अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। काना भूसी कैलस हंस के ऐसन मन।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर

मारीच राम जी की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: यह आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस विशेष नाटक की चौथी कड़ी सुनवा रहे हैं। पिछली कड़ी में आप माता कैकेयी के हठ और कोप भवन का प्रसंग सुन चुके हैं। वचन से आबद्ध पिता के सम्मान के लिए प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्यापुरी की समस्त जनता को रोता छोड़कर चले जाते हैं। अब सुनिए आगे।

0: तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
1: प्रभु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम।
2: बैठो निषादराज, सब कुशल तो है?
1: आपके चरण कमल के दर्शन से मैं सकुशल हूँ। परिवार सहित मैं आपका सेवक हूँ। कृपा कर मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, जिससे आपकी कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो।
2: सखे, तुमने सच कहा है, किंतु पितृ आज्ञा बरस चारी दस बासुबन मुनिप्रत बेशु आहारु, ऐसी दशा में ग्राम बासु नहीं उचित।
0: निषाद राज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम के लिए सब प्रबंध कर दिया। श्री राम ने संध्या आदि से निवृत्त होकर शयन किया। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव ही सोवन मृदु बानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। निषाद राज लक्ष्मण के पास आ बैठे और कहने लगे,
1: लक्ष्मण जी, इंद्र महल से भी अधिक सुहावना अयोध्या का राजमहल है। वहां की सुख सुविधाओं में सोने वाले सीताराम रति और कामदेव के दर्प को अपनी शोभा से मर्दित करते थे, वही आज सोवत महे विधिपाम न के ही।
3: निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघ पीर चरण रथ होहु।
1: आप यथार्थ कहते हैं। अरे, बातों ही बातों में सगेड़ा हो गया।
4: तार्थ, कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई।
2: तात सुमंत्र, आपने धर्म के सारे सिद्धांतों का संचय किया है, आप भली प्रकार जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मेरी ओर से आप पिताजी के चरण स्पर्श कर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें और उनसे निवेदन करें कि मेरे लिए किसी बात की चिंता वे ना करें। आपका भी यही कर्तव्य है, आप हम लोगों की चिंता में पिताजी को कोई कष्ट ना होने दें।
3: कैकेयी से प्रतिज्ञा करते समय उन्हें कष्ट नहीं हुआ?
5: लक्ष्मण, ये बड़ी अनुचित बात है।
2: सुमंत्र जी, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण का संदेश वहां जाकर न कहना।
4: सीता जी वन के दुखों को न सह सकेंगे, इसलिए सीता जी के अयोध्या लौटाने का उपाय आप और हम करें, ये भी महाराज का आदेश था। अन्यथा उन्होंने कहा था कि मैं उसी प्रकार नहीं जी सकूंगा जैसे जल के बिना मछली।
2: सीते, यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन तथा परिवार सबकी चिंता मिट जाए।
6: प्रभु, आप करुणा सागर और परम विवेकी होकर ऐसा कहते हैं? क्या तन को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहीं विलग रह सकती है?
4: किंतु राजकुमारी जी,
6: बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हु सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणुपति संगा।
4: मैं अयोध्या लौटकर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? महाराज को क्या उत्तर दूंगा?
6: सासु ससुर सन मोरे होते, बिनय करब परिपाए। मोर सोच जनी करई कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और फिर प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरीन धरे धन।

0: नहीं मग शमु भ्रमु दुख मनु मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जने भोरे।
1: सीता की शीतल वाणी सुनकर मणिहीन सर्प की भांति सुमंत्र व्याकुल हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए।
2: प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ।
3: नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना।
2: क्या कह रहे हो तुम?
3: चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु ऐही।
2: कहां चरण और कहां चढ़ी?
3: जी हाँ, जानता हूं आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है, और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता। मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहू लखनु, पै जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो।
2: सीते, लक्ष्मण, देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जा जल्दी कर, जल्ला पैर धोले और शीघ्र पार उतार।
4: केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार कर जलपान करके केवट ने परिवार सहित अपने आप को धन्य माना, फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम को गंगा पार ले गया।
3: लीजिए महाराज, अब आप गंगा पार आ गए।
2: अरे, हमने इसे कुछ भी नहीं दिया।
0: ये मणियों की मुद्रिका ही इसे दे दो।
2: केवट, पार की उतराई ले लो।
3: नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा।
0: नहीं केवट, तुम्हें उतराई ले लेनी चाहिए।
5: अरे, तुम अपनी मजूरी लेने से इनकार कर रहे हो? कैसे केवट हो तुम?
3: मैं तो केवल प्रभु के चरणों में भक्ति चाहता हूं।
2: तथास्तु।
4: इसके पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनिवर ने श्री राम जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान कर मुनि को सिर नवाकर वे वहां से चल दिए। फिर उतरी नहाई जमुन जल जो शरीर समस्याम, श्री राम जी ने निषाद राज को समझा बुझाकर विदा कर दिया। वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले।
6: अरे आओ आओ, उनके दर्शन कर इसी क्षण नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो।
7: भद्र, कैसी शीतल छाया है, हमने नरम घास और कोमल पत्ते बिछा दिए हैं, आप लोग थक गए होंगे, खबर यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिए,
6: फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
2: आप लोग व्यर्थ कष्ट न करें, आपकी कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं।
7: यह लीजिए, आपके लिए शीतल जल है, आचमन तो कर लीजिए।
2: सीते, लक्ष्मण,

0: जल ग्रहण करो।
1: धन्यवाद।
2: चलिए हम आपके साथ आगे तक चलेंगे।
0: नहीं नहीं, आप लोग हमारे लिए कष्ट न करें, कृपया लौट जाइएगा।
1: चलो आप आओ, चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो। कैसे माँ बाप है इनके, ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया।
3: विधाता की कठोरता को कौन दोष दे सकता है भला।
1: आह कितने सुंदर है ये।
3: वाह
1: इन्हें देखकर थके नारी नर प्रेम प्यासे मनहुम्रे के मृग देख ही दिया से।
3: आओ चले इनके पास चलकर इनसे कुछ पूछें।
1: चलो राजकुमारी विनय हम करही, तिया सुभाए कुछ पूछा तो डरही।
3: स्वामी अभिनय क्षम भी हमारी, बेलगु न मानव जानी गवारी।
1: कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखी, कहूं को आही तुम्हारे।
4: सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे।

0: ही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत बिपिन सिय सौमित्र समेत। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेख विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसी प्रकार देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
1: हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी हथेली पर सारा संसार बेर के समान है। माता कैकेयी के व्रत निर्वाह के लिए पिता की आज्ञा का पालन और भरत जैसे भाई का अकंटक राज तिलक हो, इस कारण मैं वन आया हूं। यहां आकर आपका दर्शन हुआ, वह मेरे पुण्य का प्रभाव है।
2: साधु साधु, राम आप रघुवंश के पताका हैं। ऐसा कहना आपके लिए सहज और सरल ही है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीशु अहिषु महिधर लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनि।
1: मुनिवर, यह सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है, मैं तो आपका।
2: आपके संबंध में और क्या कहूं, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, जगपेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा और

0: तुम्हें को जान निहारा, सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हुए सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा।
1: मुनिवर आज्ञा दें, मैं कहाँ वास करूं?
0: ए राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हूं वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अधिक क्या कहूं, जस तुम्हार मानस विमल, हंस ने जी हां त्यासु मुक्ताहल, गुन गन चुनई राम बसहु हिया तासु, स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन कई बसहु सीय सहित दो भ्रात।
2: महामुनि वाल्मीकि ने श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके व्यास से सत्पुरुषों की महिमा का विस्तार से वर्णन कर चित्रकूट की अपरिमित महिमा का भी बखान किया। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी समेत चित्रकूट पर निवास करने लगे। इधर तो श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, उधर जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या आए वो कथा सुनिए।

0: नगर में प्रवेश करते सुमंत ऐसे सब जाते हैं मानो किसी की हत्या करके आए हों। उन्होंने सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। संध्या के समय अंधेरा हो जाने पर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर ही खड़ा करके चुपचाप महल में घुसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर लोग विषादग्रस्त हो उठे।
1: हा जानकी, हा लक्ष्मण,
2: जय जी।
1: हा राम।
2: महाराज के चरणों में सुमंत का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो।
1: सुमंत कहो, राम कहाँ है? इधर आओ सुमंत, इधर, तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? सखा राम उसी लखु जय तामो ही पहुंचाओ, ना ही तो चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव।
2: महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी। महाराज श्री राम ने गुरु वशिष्ठ भरत पुरवासी आदि सभी को सांत्वना के संदेश दिए हैं और भरत जी से कहने के लिए कहा है कि वे सब माताओं की समान सेवा करें और पिता को उसी प्रकार रखें जिससे जिससे उनको कभी मेरी चिंता ना हो।
1: और लक्ष्मण तथा सीता ने कुछ नहीं कहा?
2: सीता जी कुछ कहना चाहती थी। उनकी वाणी अवरुद्ध थी, स्नेह से शिथिल, वे कुछ कह नहीं पाई।
1: हे सुमंत, कृपालु राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मेरे स्नेही राम कहाँ है? मेरी प्रिय पुत्र वधु जानकी कहाँ है? राम कौशल्या, श्रवण कुमार की कथा तो तुम जानती ही हो, वही शाप अब मुझे लगा है, वही शाप मुझे लगा है। राम के बिना इस अवस्था में कैसे मैं जीवित रह सकूंगा? हमें धिक्कार है, प्रेम का प्रण निभाने वाले इस शरीर को धारण करके ही क्या करूंगा?
3: और रघुनंदन प्राण पीते तुम बिना जिये बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुवर पितु जलधर राम राम।
2: महाराज महाराज महाराज।

राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। प्रातः काल होने पर

0: मुनि वशिष्ठ ने समयानुकूल सब प्रकार का इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते। उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी,
1: हमारे नैहर में कुशल तो है?
2: हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं?
1: तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारू, भूपति सुरपति पुर पगु थारू।
2: तात, तात,
1: भरत,
2: तात,
1: भरत,
2: अंत समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ।
1: बेटा भरत, राजा से मैंने दो वर मांगे थे, राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परिणाम स्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। तात, राव नहीं सोचे जो
2: पापिन सबही भांति कुल नासा। यदि तुम्हारी ऐसी ही कुरुचि थी तो पैदा होते ही तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला?
1: बेटा,
2: पेड़ को काट कर पत्तों को सींच रही हो, तुमने तो मछली के जीवन आधार पानी को ही उलीच दिया। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी, तू जननी भाई विदेशन कछु न बसाए।
1: बेटा,
2: हाय जब तय कुमत जी अठयउ खंड खंड होई हृदय न गय, परमागत मन भई नहीं पीरा, करिन जी मुह परेउ न कीरा। पर मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि भूप प्रतीत तोरी किमिकी नहीं, मरण काल विधि मति हर लीनी।
1: लेकिन बेटा, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी मंगलाकांक्षिणी हूँ।
2: सच पता तू कौन है? सारे संसार के जीव जंतु जिस राम को प्राण से अधिक प्रिय मानते हैं, वो भी तुझे अप्रिय जान पड़े। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई आंखें ओटी उठी बैठ ही जाए।
1: बेटा,
3: तू रोक भी।
2: कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तभई काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे।
1: हे पुत्र, तुम ठहरे थे
2: जननी, जे अघ मात पिता सुत मारे, गाय गोठ बहुसुरपुर जारे, जे अघ तिय बालक।

0: तात हे तात विधु विष चवे स्रवे हिमु आगे होई बारी चर बारी बेरागी भये ज्ञानु परु मिटे न मोह तुम्हार राम ही प्रतिकूल न हो।
1: आस कही माँ तू भरत हिये लाए धन पय स्रवही नयन जल छाए करत बिलाप बहुत यही भांति बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनवावा परम विचित्र विमान बनावा गही पद भरत माँ तु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाखी यही विधि दाह क्रिया सब कीनी विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी सोधि सुमृति सब वेद पुराना कीन भरत दस गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया।
2: वत्स आओ मेरे पास बैठो। सुनो भरत भावी प्रबल हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ अस विचार के ही देई ये दोसु व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु तात विचार करहु मन माही सोच जोगु दशरथ नृप नाही।
3: लेकिन
2: भरत राजा को अपने वचन प्रिय थे न कि प्राण। उनके प्रिय वचन का पालन करो इसी में तुम्हारा कल्याण है।
3: आप कह तो रहे हैं पर
2: भरत सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना।
0: हे पुत्र गुरुजी की आज्ञा का आदर करना चाहिए और उसे कल्याण प्रद मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति समझकर दुख को त्याग देना चाहिए।
3: आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरी भलाई है ये मैं भली भांति जानता हूं पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं अनुमानी दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही शोक समाज राज कहीं लेखें लखन राम सिय पद बिनु देखें। आप सब आज्ञा दें मैं राम के पास जाऊं मेरा कल्याण इसी में है।
0: बात मानो बेटा तुम पर ही सबका ध्यान है उठो।
2: वत्स कौशल्या की बात मानो वे ठीक कह रही हैं उठो और पश्चाताप मत करो।
3: मेरा जन्म तो रघुनाथ को वन भेजने के लिए हुआ था अभागा मैं झूठ मूठ ही पछता रहा हूं किंतु आपने दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाई देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरन न जाए आन उपाव मोहि नहीं सूझा को जिय कै रघुबर बिन बूझा एक ही आंक इहई मन माही प्रात काल चलि हऊ प्रभु पाही।
4: धन्य धन्य हे महाराज भरत धन्य हे महाराज भरत।
3: पंचो आप लोग मुझे आज्ञा और आशीष दें इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी विनती सुनकर मुझे अपना मान राम अयोध्या लौट आएंगे मुझे राम का भरोसा है।
4: महाराज भरत की जय। महाराज

भरत जी का निर्णय सुनकर सबके मन में अपार प्रसन्नता हुई। सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी करने लगे। कहां ही परस्पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजे ही साजू, जे ही राख ही रहू घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दनी मारी। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया, उनसे कहा कि राज तिलक का सारा सामान साथ ले लो। मुनि वशिष्ठ वन में ही श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। माताओं को आर्त जानकर उनके लिए भी पालकियां सजाई गईं। पूरी तैयारी करके अपार जन समूह के साथ भरत जी वन को चले।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

जासुककों मुनिवर रटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइये सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यार।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।